हे शब्द धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित

सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की रीसै होर कच्चू पिच्चू बोल दे से कूड़ी।

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेनु अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परे तकना के परमात्मा रूप।

धनवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिदे ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

0: का बधावन रहे गुरबिन ज्ञान हो ओ गुरबिन ज्ञान हो।
1: पापा जी थोड़ी इस छबील के आसरे साडा पेंडा कटिया जाता है।
2: आसरा उसका आधार था। मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोहे जलत राम जल पाया राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मन में जल लग रहे हैं थोड़े को हजारे यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी की एक छपड़ी और कंडे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे विनाशा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास। मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जनदासा। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे, ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो और अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पे कहिए,

सिकंदर को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ

पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियां या बुरी।

मौत बन के आ गया। कोई मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे बच्चियां नूं नीहां विच खिलार के जुल्म करे, ऐ गल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर कोलों बर्दाश्त ना होई। सूरमे दे अखां विच खून उतर आया, डोले फरक गए। ओ जलाद जिड़े आखदे सन गोड्यां दियां चपणियां उतार दो, कंध ना बिंगी होवे। समाणे दे रहण वाले ओ जलाद जिन्हां ने बच्चियां दे गोड्यां दियां चपणियां उतार दित्तियां सन, अज इन्हां जुलादां नूं घरों कढ़ के मारिया ते नाल 500 सिपाही नूं भी मार दिता है। जदों ये खबरां सरहंद विच पुजियां, बंदा सिंह बहादुर आ रहा है, हजारां दी गिणती विच शाही फौजां कठियां हो गईयां ने। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद दे उपर

मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो। ए मालिक सानू एहो जिया वर दे शुभ कमा तू पिछे ना हटी, जुल्म नू देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघा ने, मुगल फौजा ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघा ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघा ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीयां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे शिपाही जांदे ने दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुलमी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। आज जेड़े सिंह पकड़ के ले आंदे

खातर अपने पुत्र नूं वार के टुर गई है। किवें चाह है सिंघां नूं शहीदियां दा, इन्हां नूं मौत कोलों डर नहीं आंदा? नहीं ओए, इन्हां नूं मौत कोलों डर नहीं आंदा, सगों मौत इन्हां कोलों डरदी। दरबार सजिया है, कलगीधर महाराज तख्त ते बैठे ने, पिछे बैठी एक माई रोई जांदी है। सतगुरां ने इसनूं कोल बुलाया, क्यों बई, क्यों रोंदी है, तैनू की गल है, केड़ा दुख है? महाराज, मेरा पति ते मेरे दो पुत्र जंग विच शहीद हो गए सन। ओह समा मैनू अजे तक याद है, जदों तुहाडा स्नेह साडे घर तक पुजा सी कि मैदाने जंग विच जाना है। मेरे पति ने कितना ही पुत्रां नूं कोल बिठाया ते आखिया, बच्चो अज ओह समा आ गया है, आपां कुरबानी दे के कलगीधर पातशाह दे सुपुत्र होण दा सबूत दईए। बच्चो, मैदाने जंग विच जा के कदम पछा नहीं पुटने, अगे होना है। जदों मैं ये खबरां सुनांगा ना कि कलगीधर दी जीत होई है, मेरे बच्चे बेशक शहीद होए ने, ते मेरा फकर नाल सिर उच्चा हो जाएगा, मैं माण महसूस करांगा। इनी गल आख के ये माता फिर रोण लग गई। कलगीधर आखन लगे, सिंघणीए, तू पंजां ककारां दी त्यार पुर त्यार सिंघणी हो के शहीद पति ते पुत्रां दी खातर रोंदी है, सोभा नहीं देंदा। ना महाराज, ऐ गल नहीं, माता आख रही है, ना महाराज, ऐ गल नहीं। हजार वार इस धरती ते आवां, हजार वार तेरी शान दी खातर पति ते पुत्रां नूं बाहर जावां, कौन मरनों डरदा है? रोना इस गल दा है, जदों मेरा पति ते पुत्र घरों जंग वास्ते टुरन लगे सन ना, ते एक मेरा पुत्र बीमार हो गया, जो अजे तक बीमारी नाल मंजे ते पिया है। मैनू डर रहिंदा है किते बीमारी नाल ही काल वस ना हो जावे। महाराज, मेरे पुत्र नूं ठीक कर दिओ, तेरे एक इशारे ते मैं अपने पुत्र नूं नाल लै के मैदाने जंग विच जूझ जावां। महाराज सुन के हैरान होए, कलगीधर चमत्कार विच ये इतिहास लिखिया है, अज जो तुसीं इस कैसट विच सरवण कर रहे हो। तन तन है सिंघणीए सिदक तेरा, भले जगत दी खातर आप मोई। तन है सिंघणीए, तू अपने पति ते पुत्रां नूं जीवन मुक्त करवा लिया है। फिक्र ना कर, तेरा पुत्र बीमारी नाल नहीं मरेगा, ना कर फिक्र। गरीबां ते मजलूमां दी खातर सरबत दे भले लई जंग विच जूझदा होया शहीद होएगा, ते गुरु नानक दी गोद विच जा वराजेगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त होवेगा। चरणा नूं पकड़ लिया, महाराज एयो ही चाहुंदी सी, मेरा पति ते मेरे दो पुत्र तेरे इशारे ते शहीद हो के सचखंड बराजे होणगे, ते असी क्यों बांझे रह जाइए? गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दा उपदेश कदी भी सिंघा ने नहीं भुलाया, अज तक भी सरबत दे भले लई अपना सिर अगे डा देंदे ने। एयो ही अरदास, देहे शिवा बर मोहे इह, शुभ कर्मन ते कब हो ना डरो, ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चे कर अपनी जीत करूं। ए महाराज, ए सतगुरु, ए मालक, सरबत दे भले लई कर्म करदिया होया

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश कीती गई है। आप समूह संगत नू खालसा जी दे 300 साला

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अद्धे

हर्ष मेरो भवन भंडारा, हर्ष मेरो करत उधारा, हर्ष मेरो सर्जन परवारा।

संसार से बुद्ध तदपन उपमत सुख या मैं रंचन मिथ्या भाखी पार ब्रह्म गुरु नानक साखी रोम रोम जे रसना पावो तदप खालसा जस तै गावो रोम रोम जे रसना पावो तदप खालसा जस तै गावो हो खालसे का सदके।

करे इन्हीं के भावत अरहन के सेव सुहातन जी को दान दियो इन्हीं को भलो अरहन को दान में लागत नी को आगे फल इन्हीं को दियो जस जग में और दियो सब फीको मोह गृह में तनते मनते सिर लाओ।

हे गुरु की संगत सिख एजुकेशन विद्या दा प्रचार आहा ए गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी अपनी दात निरंकार तो मंग रहे हैं झोली पा इन्हीं के प्रसाद सो

ते मैनू निवाजेगा, मैनू मान बख्शेगा। मैं तेरे दर ते आके तेरे अगे पुकार करदा हां कि कृपा कर मैनू अपना।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करता है कि मैं मनुख दे चरना कमला तू की लेना है,

अवगण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नूं कट के नकारा करके सुट दें मनुख मनुख ना रह के पशु हो जांदा औगणे आरा मनुख पशु गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा औगणा दे वस पै के बंदा थले गिर जांदा अपनी हस्ती तो नीवा हो जांदा अवगुण मनुख दे गुणा नूं कटदे ने दी हस्ती नूं कटदे ते सतगुरु अवगुणा नूं कटदे सतगुरु दे नजदीक होइए सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे अवगुण कटे जांदे ने गुण निसरदे जिस सतगुरु पासों प्रभु नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा जिस सतगुरु पासों हिरदे च नाम वसाउण दी जाच आउंदी जिस सतगुरु ने आपां हुणे तक पढ़ रहे सां एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मूआ ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहन वाला अटल जीवन है ऐसा जीवन बख्शिया है जेड़ा मौत तो उपर है और आप देखदे हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जांदी मनुखी जीवन दी कहानी मुक जांदी लेकिन एक गुरु का सिख है जिदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होंदी पहला मरण कबूल जीवन की छड आस औगण मर जांदे नकारा मनुख मर जांदा एक सच्चे मनुख दा जन्म हुंदा गुणा दा जन्म हुंदा दैवी गुणा नूं लै के मनुख उपर नूं उठदा गुरु नूं प्यारा लगदा गुरु नूं पाउंदा है संसार नूं चंगा लगदा और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश कीती है सानू जिवें महाराज ने पावन बाणी च किया है ना जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी तेरे चरनी लगन तो पहला साड़ी की अवस्था सी हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए सरदार हो गए मान वाले हो गए रुलते फिरते कीड़े सत्कार योग हो और ये सत्कार इत्थे भी मिलता है तेरी दरगाह विच भी मिलता है तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले है चूके सब सोग संतापे जिंदगी विचो संताप निकल गए चैन आ गया सुख आ गया जीवन में कायर हुंदे सां बहादुर बना दिता नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता आलसी हुंदे सां उद्यमी बना दिता बुरा चित वधे सां सेवादार बना दिता परोपकारी बना दिता और जिसने अवगुण कट के गुण समझा के सानू इन्ने योग कीता है अमृत दियां दातां दे के नाम दियां दातां दे के बाणी दी सौगात बख्श के जीवन दा सुचज बख्शिया साहब कहंदे ने जिन जग जीवन उपदेशिया तिस गुर को हो सदा घुमाया मैं वारने जावा उस सतगुरु तो तिस गुर को हो खनिए मैं टोटे टोटे हो जावा बलिहारने जावा उस तो जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया जिसने वाहिगुरु का नाम मेरे हिरदे विच सुना के वसाया तिस गुर को हो वारने जिन होमे बिख सब रोग गवाया होमे वर्गे महारोग मेरे जीवन विचों कटे ने जिसने तिस सतगुर को वड पुन है ओदा कोट आन कोट धनवाद उन्हें बड़ा पुन कीता मेरे ते जिन अवगुण कट गुणी समझाया सदा उस सतगुरु नूं चेते रखना गुरसिख दा फर्ज है ओदा परोपकार साडे सिर ते ओदी बख्शिश साडे सिर ते करदा है जिसने हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे साडे मथे ते अपने अपने प्यार दा दाग ला के अपने प्यार दी निशानी ला के अपना बना के अपना रूप दिता है अपना सुचज बख्शिया है अपना प्यार बख्शिया है
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਹਮ ਕਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ਾ।

आए उस ब्रिख हेठा आके बह गए जिथे सब तो पहला गुरु नानक दे दर्शन कीते सन। राय जी आ बन दे पत्ते पत्ते कोलो पुछदा है किते कोई गुरु नानक दा सुनेहा तो नहीं आया भाई। ते फिर राय जी दे नाल राय दा नौकर सी उमेदा, आख्या उमेदिया तू गुरु नानक दे घर जा पता कर कोई सुख स्नेहा आया गुरु।

मैं ता कालू जी राय बुलार दे पटवारी सा। आख्या मैं ता जी आपनू राय जी याद कर दे उस बन विच बैठे हन ब्रिख हेठा जिथे गुरु नानक दे दर्शन कीते सन उना। मेहता जी आए राय जी ने आउंदे ही पुछया मेहता जी कोई गुरु नानक दा सुख स्नेहा आया। मेहता कालू जी कहन लगे कोई नहीं आया 12 साल बीत गए कोई स्नेहा नहीं आया। आख्या मैं ता उस वेले नू कोसदा हां राय जी मैं अपने हाथ वाल वेख के अपने हाथ नू शराप देंदा हां के तू सुख के तीला क्यों ना हो गया क्योंकि मैं ही सां जिसने 20 रुपया दे पिछे गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मारी सी। राय जी जापदा गुरु नानक हुण नहीं आवेगा। आख्या इवें ना आखो तू बेबे नानकी जी नू खबर भेज। मेहता कालू ने आख्या बेबे नानकी नू खबर भेजी है सुल्तानपुरी जापदा ओ भी इथे आवेगी क्योंकि घर दी हालत ता बहुत खराब है 12 साल हो गए हन गुरु नानक नू घरों गया ते घर ता घर नहीं है खंडर बन चुके क्योंकि जिस घर का चिराग 12 साल हो गए हुन बार होवे जिस माता का इको एक बच्चा इको एक लाल होवे ते ओ भी 12 साल हो गए हुन गया होवे करो ते कोई सुख स्नेहा ना होवे उस मां का की हाल होवे। इथे माता त्रिपता ने रो रो के अपनियां अखां गवा दी कि हे नानक कदों आवेगा कदों आके अपनी सोहनी आवाज मेरे कन्ना विच पावेगा। इथे माता तृप्ता अरदास कर रही है बेनती कर रही है कदों आवेगा बेटा असी तेनू पछाणिया नहीं बेबे नानकी ने तेनू पछाणिया के तू रब है

मत नाल वाहिगुरू नूं याद करना सी ओ मत पसारियां ने मार ली नहीं इथे तां आउणा ते जाणा है इथे तां धर्म कमाउणा है ते धर्मशाला जाण के टिकणा ते तुर जाणा है मन इथे नहीं लाउणा मन ओहदे नाल लाउणा है जिसने भेजिया ते बुलाउणा महाराज कहंदे ने कोयल आया कोयली क्या तिस डंप पसार मोहलत पुन्नी चलना तू संभल घर बार हर गुण गाओ मना सतगुर सेव प्यार गुरु की सेवा प्यार नाल कल प्रभु नु याद कर ओदे गुण गा क्या थोड़ी बात गुमान जैसे रैन प्राहो ने उठ चल से प्रभात क्या तू रत्ता ग्रस्त से ओसा फुला की बागात मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रभ लोड सर पर उठी चल सा चलना छठ जासी लख करोड़ लख चौरासी भ्रमतिया सो दिन लख चौरासी भ्रमतिया दुलभ जन्म पायो नानक नाम संभाल तू जिदी लोड़ है तेनु एथे भी ते दरगाह विच भी जिसने तेरा मुख उजला करना है।

गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं चरण छिलो मार्ग गोविंद। एकेड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी ओदे गुण गाउने। ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। पुस्तक मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ए रसना पवित्र हो जाती है जदों नाम दा अमृत पींदी है जपदी है श्री वाहिगुरु। निर्मल रसना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर लै जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग। जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन। जे उदा परिवार है तां एक पिता एक सखे हम बारक। साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसदे बारक हां। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बन आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारा पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांके हृदय बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां भई मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले ले नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधियारे, तीन बार पतिया भर लीना। कहंदे ने होनी नहीं, इन्होंने तीन बारी अगे भी मेरी परीक्षा लई, तीन बार पतिया